ये मिला गुड नाइट, तो ये गुड नाइट नाउ एफएम मिला सलीम ग्रीटिंग्स और गुड नाइट टू मिस्टर गोल ऑल मंगी स्टाबुसेम ऑल ओकाई सिग्रेटी गट्स मंगी स्टाबुसेम लो ईस्ट बोरोको कमांडा बुसेम लो गोडेंस कमांडा उसे लो वाइगनी मिला सलीम गुड नाइट स्ट्रेट गोल ऑल ओबीटी मेंबर्स बुर्गी टू लाइट स्टाब वन टू यू ब्ला.